इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अप

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का।

सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी किरणी एक बार फिर हाजिर हूँ रेट्रो हिट्स के एक और एपिसोड के साथ। बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, गिला तब करूं जब तुम साथ होके भी पास नहीं होते।

जान तुम पर निसार करती हूँ, जान तुम पर निसार करती हूँ, मैं नहीं जानती दुआ क्या होती है।

रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख, रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख कि दुश्मन भले ही आगे निकले, दोस्त कोई ना पीछे छूटे।

मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब। मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब, वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती।

कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं।

मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे। मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे, लेकिन जिंदगी फिर नहीं मुस्कराई बचपन की तरह। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। एक और लघुकथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और इस लघुकथा को हमारे को भेजा है कल्लव जोधपुर राजस्थान से श्री सेंसाराम सारन ने। आइए सुनते हैं सेंसाराम सारन द्वारा भेजी गई ये लघु कथा। एक बहू ऐसी भी। बहू विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे जो सोकर अपने कमरे से बाहर निकली ना, तिन्हें ड्राइंग रूम में बैठी सास की कड़क आवाज सुनाई दी। अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहां नहीं चलेगा, सुन रही हो बहू? ये सुनते ही बहू वापिस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आई और सास के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। मारुति अर्टिगा 16,40,000, 42 इंच स्मार्ट टीवी 52,000, फ्रिज 23,000, वॉशिंग मशीन 22,000, सोफा डाइनिंग टेबल और बेड 1,70,000, मिक्सी ओवन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 4,65,000, नकदी 21,00,000। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने कहा, मम्मी ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भेजी गई थी। लिस्ट में लिखी सारी चीजें मेरे पापा ने मेरे साथ ही भिजवा दी हैं, और सभी चीजों का आपने मिलान करके भी देख लिया। और ये भी देख लीजिए, आपने इस लिस्ट में कहीं कोई ऐसी मांग तो की नहीं कि बहू पढ़ी लिखी हो, गुणकारी हो, संस्कारी हो, कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। और हाँ मम्मी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने बैग भी मुझे दिया था और कहा था, बेटी जब तक तू मेरे पास है, मेरे आंगन में, तब तक तो सुरक्षित है। मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। सास ने बहुत हैरानगी और उत्सुकता से पूछा, भाई इस बैग में क्या है? तब वो उन्होंने धीरे से उस बैग को खोला और उसमें से 32 बोर का रिवाल्वर निकाल के सास के आगे रख दिया। ये देखकर सास झट से अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, अरे बेटा हमें तो सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत कीजिए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बहुएं तो किसी की बेटी है। अगर आप इतना भर भर के दहेज लेंगे कि देने वाला कर्ज के तले दब जाएगा, आप क्या सोचते हैं आप उनके नीचे नहीं दबेंगे? दबना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिश्ता नहीं, आपने सौदा किया है। सौदों से बचिए।

नंबर 7056413010 पर हमें जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

मैं आपको ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन होती है।

तुम्हें छूने की मनाही रही, तुम्हारे दुपट्टे का एक कोना मेरे हाथ आते आते निकल गया, जाने कहां गया, कहां खो गया, कौन ले गया, कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे पास न रह सके, इन हवाओं के संग बहते गए, शायद बिखरते गए।

हम तो मुसाफिर हैं, भटकते हैं अपने ही साए के साथ। ये रह गुजर अभी खाली है, यहां से गुजरता कोई क्यों नहीं। सिलसिले थे मोहब्बतों के जब रवां, तो जमाने जुदा नहीं थे। आज जब रुक गए कदमों के फासले और मिट गई उम्मीदें, तो हुआ जमाना बेजार। दूर तुम भी हो, हम भी हैं, पर रूहों का यह सफर जारी है।

यूं ही बेकरारी छा गई। जब तुम्हारे आने की आस लिए बैठे हैं तो मिजाज में ये बदहवासी कैसे? सिरफिरे इस मौसम में हवाओं के रुख में ये बेचैनी कैसी? इन सब्जज़ारों में तुम्हारी आमद की खुशबू आज लरसती क्यों है? क्यों तुम्हें देखने चांद उतरा है इस झील में और लहरें साहिल से टकराती क्यों नहीं?

मौसम था तुम्हारी यादों का और हम पानियों की गोद में जलते सूरज को ढूंढ रहे थे। शायद सूरज के साथ साथ हम तुम्हारी यादों के सफर को तय कर रहे हैं। रज के रुलाना, खुल के हंसाना तुम्हारी शरारतों में शामिल है। जुदाई तो एक बहाना है, कसमें वादे निभाना सर्दियों की धूप जैसी है। कसमें वादे निभाना सर्दियों की धूप जैसी है। टुकड़ों में बट गए हसरतों के मीनार यूं ही बेवजह।

शुक्रिया आपका जो आप हमारे साथ बने रहे इस सफर में। गीतों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: उत्साह बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक। दोस्तों, लीजिए फिर आ गया वही दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते रहे थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छ का और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार, धोएंगे साबुन से हाथ खाने से पहले और शौच के बाद,
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा,
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करे आज ही के स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दुष्का भी भाग जाएगा अगर होगी आपके आसपास ऐसी बियार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छ का तुमको याद है ना, देश के सभी गांवों ने स्वयं को ही ODF घोषित किया है। अब ये ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे ऐसे कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां

0: ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांवों के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना, रेडियो के माध्यम से, और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटा नहीं।
1: अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.01 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो।

0: यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे, ना हम कचरा फैलाएंगे ना दूसरों को फैलाने देंगे, हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद में स्वच्छ का और तुम सुजल साथ में दुष्ट का भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, कैसे?
2: अलग अलग गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दुष्का की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत। दुष्का की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

0: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता की गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां प्रदूषिका कुमार ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
1: आ गया मैं दूषिका कुमार, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां लोग खुले में शौच करते हैं, जहां शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग न करने से खराब और टूट फूट जाते हैं, वही तो बसता हूँ मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द कर देता हूँ मैं बीमार। खुला शौच मेरी जीत, टूटी टंकी मेरा ठिकाना, गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
2: घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। बिमला के बेटे को तो खुजली हो गई, ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक लगता है।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए, जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
2: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है।
1: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द, उल्टी सब मेरी सौगात है। तुम सबको तो मुझसे रहम की पुकार करनी चाहिए।
0: एक दिन गांव की सीमा पर आता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव में रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
4: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों है और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
2: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं।
4: सब समझ गया चाची, सब समझ गया हूँ मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता है।
1: मैं हूँ इन सब का कारण, मैं ही हूँ। बोलो क्या करोगे तुम, बोलो बोलो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगा, समझे?
4: अच्छा तो तुम हो दूषिका कुमार और ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे इलाज करता हूँ।
0: सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
4: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उससे साफ भी रखो, खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
0: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं, शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका कुमार बेचैन होता है, गांव की गली में छिप कर देखता है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालय पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? अरे अरे, ये गांव में सब क्या हो रहा है?
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छता।
2: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रख रखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छ का।
0: अब गांव में हर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, शौचालय प्यारा लागे रे मारा शौचालय, शौचालय प्यारा लागे रे मारा शौचालय, साफ रखो हर रोज रे अपनो शौचालय, बीमारी दूर भगाए रे स्वच्छ शौचालय, घर में हो साफ सफाई रोज रे, बीमारी रखो कहीं कोस रे मारो स्वच्छ शौचालय।
1: अरे नहीं, स्वच्छता की चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण साया तो खत्म होता जा रहा है, सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय में ढक्कन लग गया, नाली साफ कर दी, खुले में शौच के लिए अब कोई नहीं आता।
0: स्वच्छता, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं, सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दुशिका कुमार थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रहा है।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब मुझे तो जाना ही होगा।
0: गांव की महिलाएं स्वच्छता को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
2: तुम सबकी मेहनत ने दुष्टता को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
1: अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा?
4: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका कुमार। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगे।
2: ये दुष्का फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
1: औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए? अब नहीं बोलोगी?
2: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना, शौच के बाद हाथ न धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
5: हम सब समझ गए हैं दुष्का कुमार, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें दूर भगाएंगे।
1: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
2: नहीं दुष्का कुमार, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, सूखा और गीला कचरा को सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड़ा और सही तरीके से नालियों का निर्माण, साथ ही रखरखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलई कचरा प्रबंधन के लिए गांवों के आसपास FSTP बनाए या पास के शहरी FSTP या STP में जुड़े।
0: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर घर में शौचालय है और उसका रखरखाव भी। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका कुमार हार चुका है। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर।
5: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी हर दिल की अब तैयार।
2: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान। मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छ का सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव के एक स्वच्छता चैंपियन की बातचीत सुन लेते हैं।
4: स्वच्छता चैंपियन ये कौन होते हैं?
2: स्वच्छता चैंपियन वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों की स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छता चैंपियन अब हमारे साथ है।
4: निदस्ता रेडियो आपके जीवन का प्रवाह। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आए हैं गांव तेजा मोड़ी में और हमारे साथ यहां पर कई सारे गांव के रहने वाले हैं और वो बैठे हैं और हमारे साथ सरपंच जी भी है। तो सबसे पहले हम यहां के सरपंच जी से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें ताकि लोग ये जाने कि हम किन से रूबरू हैं।
6: पार्थ जी, पहले तो मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं सरपंच गांव मौड़ी जी और हमारी पंचायत दो गांव की पंचायत है, गोविंदगढ़ है जी एक मौड़ी, वहां से मैं सरपंच हूं
4: जी।
6: और आप जो भी हमको गांव के बारे में पूछेंगे वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।
4: सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो हम सरपंच जी से इसलिए सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उनको गांव के बारे में सारी जानकारी रहती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में और आसपास के जो आप के गांव है, अपने लोग हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं।
6: मेरे गांव में जी बहुत पुराना गांव है जी मेरा
4: जी
6: और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, आपस में मिलवर्तन बहुत अच्छा है और यहाँ पर ऐतिहासिक गांव होने के कारण सभी जातियों के लोग रहते हैं और जिनका आपस में बहुत ही अच्छा मिलवर्तन है और सभी एकता से और बिल्कुल किसी भी पक्षपात के बगैर रहते हैं और अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है।
4: तो आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि गांव की उन्नति होनी चाहिए। उन्नति में हम कई सारी चीजें देखते हैं जैसे गांव में सड़कें, गांव में पानी की सुविधा। तो क्या आपके गांव में जो सड़कें हैं उनकी रखरखाव और जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है या अगर उसमें कोई कमी है आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात को और आपके गांव वालों की बात को सरकार तक पहुंचा सकें।
6: मेरे गांव में जी कम से कम भी 4 चौपहरे गांव से 7-8 सड़कें लगती हैं
4: जी,
6: सबकी हालत ठीक है तकरीबन
4: जी,
6: लेकिन एक थोड़ा उन्नति की बात ऐसी है जी गांव में जो गोहर रास्ते हैं वो रास्ते कच्चे हैं और उनको पक्का करवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी और जितने भी अधिकारी हैं उनको सबके पास अपना जो भी लिखित रूप में रेजुलेशन पंचायत का डाल का सबको पहुंचा दिया है कि उनको पक्का किया जाए क्योंकि वहां पर कुछ लोग जैसे डेरे हैं वो लोग रहते हैं उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है।
4: आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ गांव के बारे में, जो साफ सफाई है, इसका क्या साधन है यहाँ पे, पहला। दूसरा, क्या नल से जल हर घर में आता है या अभी भी वो पुरानी प्रथा है, हमारी जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत दूर से पानी अपने घरों में लाते हैं, उसके बारे में आप बताइए।
6: हमारे गांव में जी दो बोर हैं जी,
4: जी,
6: और सबके घर में पानी पहुंच रहा है
4: जी, नल से जल,
6: नल से जल
4: जी।
6: और एक बोर का और रेजुलेशन पे का दिया हुआ जी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है जी, गांव के बीच में से थोड़ी ऊंचाई है और साइड में नीचा है, तो साइड में पानी जाई जहा, गांव के बीच में पानी जाने में थोड़ी दिक्कत हुआ, इसलिए एक बोर
4: उस इलाके के लिए करा
6: हाँ,
4: जाए
6: हाँ जी, उस इलाके के लिए एक बोर और लगवाया जाए, एक नलकूप यानी पानी पहुंचाने के लिए, उसका मैंने रेजुलेशन डाल के दे रखा है।
4: साफ सफाई के साथ हमारा जो व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखना, जिसको हम अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, पर्सनल हाइजीन कहते हैं, उसके बारे में लोग कितने जागरूक है। जैसे हमने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं, इसके बारे में कितनी जागरूकता है गाँव में, और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनका पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में आप अगर कुछ बता सकते हैं तो।
6: भारत जी पहले तो लोग अनपढ़ होते थे
4: जी,
6: लेकिन आज गांव में लोग बहुत जागरूक हैं
4: जी,
6: और बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप तो साबुन से कह रहे हैं जी, तो शैम्पू आगे हाथ तो जी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जी, जो गाँव में सबके घर है जी, और कोई ऐसी बात नहीं है जी, बड़ी साफ सफाई है और हरेक बंदा बड़ी साफ सफाई के साथ रह गया जी। मैं तो अपने गांव के बारे में यही कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे लोग हैं
4: जी,
6: और आपसे मिलकर हाँ जी सारे, और सारे नु यही मेरा तो संदेश है जी, भी अगे वास्ता भी सब पार्टियां नु साइड में रखता, पार्टियां पूर्तियां ने कुछ नहीं करना जी, सब ने आपसे मिल बरतन बढ़िया रखो और अच्छे तरीके के रहो, भाईचारा वरतो, कोई जाति धर्म मेरा वगैरह कुछ ना वरतो, ये चीजां जो
4: इंसानियत को सबसे आगे रखो,
6: इंसानियत को आगे
4: जी,
6: यही कहना चाहूंगा जी। मैं तो गुरबाणी का फरमान है जी, अब अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, तो उस गुरबाणी के अनुसार मैं तो कहूंगा भी जीवन जियो और बढ़िया तरीके कर।
4: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपकी बात हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
8: स्वच्छग्रह सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छग्रही बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
2: मुझे ऐसा लगता है सोजल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है और आगे भी सारे गांवों को ODF प्लस मॉडल बनाकर ये जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
8: सही कह रही हो स्वच्छ का, मैं जब छोटा था गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे, और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस जन आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
2: तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
8: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है, और इसलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य एक स्वच्छ गृही की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में और बनाए रखने में और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ये योजना हर सत्र राज्य, जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है, तथा ग्राम सत्र की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
8: बस बस देवी बस, मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य है।
2: हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, तभी है तुम्हें इतनी जानकारी।
9: मेरी बात, उठा लो अपने हाथ, अंकल हो या आंटी सब आ जाओ अब साथ।
10: बचाना है पानी ये सबको रखना याद, खत्म हुआ एक बार न मिलेगा उसके बाद।
9: सब जानते हैं पानी कितना जरूरी है, इसको बचाना भी तो अपनी मजबूरी है, अपनी मजबूरी है।
10: छोटे बनकर पानी गिराना थोड़ा कम कर, पहले पेड़ लगाओ फिर नदी बचाओ, बारिश के पानी को सब जमा कराओ। सबसे पूछो अंकल
9: रेन वाटर हार्वेस्ट करा क्या?
10: नहीं करा है तो फिर क्यों खड़ा है?
9: आने वाला कल होगा अपना ब्राइट, बोलेंगे सब बात है मेरी राइट, फिर पानी पे ना होगी कभी फाइट, पानी होगा हर टाइम दिन हो या नाइट।
10: हाँ हाँ छोटे दिन हो या नाइट,
9: सब सुनो मेरी बात।
11: रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी को बचा कर उसे पौधों के लिए, सफाई के लिए और बाकी सब कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जन शक्ति में ही जल शक्ति। जय हिंद।
8: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांवों के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को कहा था श्रोता साथियों से, और साथ ही ये भी कहा था कि अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
2: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
8: बिल्कुल आए हैं स्वच्छ का, और उनमें से हमने 3 स्लोगन छांट भी लिए हैं, उन श्रोता साथियों को पुरस्कृत भी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन।
2: पहला स्लोगन भेजा है बंशी लाल ने, गाँव गाँव में हो सफाई तभी दूर होगी हर बीमारी। अगला स्लोगन भेजा है हरजीत सिंह ने, स्वच्छ गांवों से बनता है स्वस्थ देश, यही है भारत का नया संदेश। और अगला स्लोगन है टीम रेडियो वितस्ता की ओर से, हर नागरिक जब हाथ बटाएगा तभी स्वच्छ भारत बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
12: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हमारे श्रोता साथियों ने, और अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
8: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
2: तो भेजिए जल्दी से जवाब, सही जवाब भेजने वाले के नाम शामिल होंगे अगले अंक में। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010।
8: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वो आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
2: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
8: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
2: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत।
8: आप हमारे सवालों के जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर भेज सकते हैं। नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं, 7056413010। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम अपने पसंदीदा रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता से। फिलहाल स्वच्छ का और सुजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
13: चमन उजाड़ा है अपना, चमन उजाड़ा है पल पल हर पल।
12: आप सुन रहे थे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी एपिसोड 2 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अब तक हुई प्रगति की झलक। इस एपिसोड में स्वच्छता के पात्र को आवाज दी आरजे किरणी ने, दुष्का कुमार को आवाज दी राहुल अलियान ने, सुजल कुमार के पात्र को आवाज दी भारत सोपोरी ने, नाटक में सूत्रधार को निभाया मुकेश गुप्ता ने, रिकॉर्ड एडिट और निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये एपिसोड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम था। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विधस्ता की पेशकश।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। प्रस्तुत करेंगे राहुल अलियान, स्क्रिप्ट निया जैन का, एडिट निर्देशन भारत सोपोरी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7 और आज हमने चयन किया है फिल्म चलते का नाम गाड़ी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। आज हम आपको सुनाएंगे फिल्मी किस्से फिल्म चलते का नाम गाड़ी का, जो हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाई एक साथ नजर आए। ऐसा बहुत कम फिल्मों में हुआ है। इस फिल्म में तीनों भाइयों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म में मधुबाला ने भी अहम भूमिका अदा की है। फिल्म को सत्यन बोस ने निर्देशित किया था और इसका संगीत SD बर्मन ने दिया था। आप बने रहे हमारे साथ, आपको इस फिल्म के और भी फिल्मी किस्से सुनाएंगे और इसी फिल्म के मनमोहक गीत भी।
1: हम थे वो थी हम थे

दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: याने प्यार हो गया।
1: इस फिल्म का उद्देश्य है कि जो काम करता है वह ठीक है, चाहे वह कैसे भी काम करे। यह संदर्भ संभवतः तीनों भाइयों की पुरानी घिसी पीटी कार की ओर है, जो ज्यादातर खराब हो चुकी है फिर भी काम करती है। फिल्म के दूसरे गाने बाबू समझो इशारे के शूट के दौरान कैमरा पर्सन आलोक दास गुप्ता की कार से टक्कर हो गई थी। यही नहीं, एक गाने के शूट के दौरान आलोक तालाब में गिर गए थे और डूबने ही वाले थे, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था।

0: रे।
1: इस फिल्म के साथ ही इसके गाने भी हिट हुए थे और 5 रुपया 12 आना तो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी कहानी है? दरअसल किशोर कुमार पर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से 5 रुपया 12 आना का उधार था, जिसको लेकर वो मस्ती में गाते थे। इस बारे में अमित कुमार ने रिवील किया था।

बमक बम बमक बम बमक बम बमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा।

इसके साथ ही मधुबाला की 1958 की लगातार चौथी बड़ी हिट फिल्म बन गई, जिसे 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शीर्ष महिला सितार के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। फिल्म के एक गाने में मधुबाला को विलेन सज्जन प्रपोज करता है, लेकिन मधुबाला इसे कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि निर्देशक बोस के समझाने के बाद आखिर में मधुबाला मान गई। इसी फिल्म के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की नजदीकियां भी बढ़ी और दोनों की ये नजदीकियां हाल कैसा है जनाब का के शूट के दौरान हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

0: कहा जाता है इस फिल्म का निर्देशन पहले बंगाली डायरेक्टर कमाल मजूमदार करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त के 3 घंटे पहले ही उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया और वजह बताई कि वो तीनों गांगुली ब्रदर्स को लेकर हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब कमाल मजूमदार ने फिल्म से इनकार कर दिया तो किशोर कुमार सत्यन बोस के पास गए और बात बन गई। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार और अनूप कुमार को किशोर कुमार ने ही मनाया था। सिर्फ यही नहीं, फिल्म के लिए पिता की कार का कंसेप्ट भी उन्होंने ही लिखा था।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

0: फिल्म शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने सेट पर खूब मस्ती की और कई बार सीन में बदलाव भी किए जो बाद में फिल्म में रखे गए। ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई थी। इस फिल्म को लेकर किशोर कुमार को लगता था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। दरअसल किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी आय कम रहे और इनकम टैक्स में घाटा दिखा सके, लेकिन इसकी कॉमेडी, संगीत और कहानी से इसे सुपरहिट बना दिया गया। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने की उम्मीद के साथ चलती का नाम गाड़ी ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गया और उस साल की दूसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाद में किशोर कुमार ने इस फिल्म के सभी अधिकार अपने सचिव अनूप शर्मा को दे दिए।
1: अरे अरे अरे रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी,

अर रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी चुभ जाएगी पहलू में बिरहा की सुई।

0: हाय हाय, रुक जाओ ना जी, हे ऐसे क्या जल्दी चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई, ए रुक जाओ ना जी, ऐसे क्या जल्दी चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई।
1: चलती का नाम गाड़ी के बारे में जिस बात का अक्सर जिक्र किया जाता वह है महिला का चित्रण। मधुबाला का किरदार एक साधारण रूप से आजाद महिला का है जो अपनी कार चलाती है और पुरुष प्रधान दुनिया में अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए अटल है। अनूप कुमार की प्रेमिका पेट्रोल पंप चलाती है। अशोक कुमार की पूर्व प्रेमिका की जबरन शादी कर दी गई थी, लेकिन जब वे 10 साल बाद मिलते हैं तो वे उसे वापस लेने के बारे में दोबारा नहीं सोचता। 1950 के दशक या वास्तव में 1960 या 1970 के दशक की किसी अन्य हिंदी फिल्म के बारे में नहीं सोच सकता।

बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, और हम थे वो थे और समा रंगीन, जैसे गाने उस समय बहुत हिट हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। और साथ ही यह फिल्म चलती का नाम गाड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म है, जिसने अपनी छवि लोगों के मन में हमेशा के लिए छोड़ दी है।

और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त राहुल अलियान को दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नई फिल्म और फिल्मी किस्सों के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। आज की फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। रिकॉर्ड व प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। स्क्रिप्ट तैयार किया निया जैन ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते। सुनते रहो अपने

0: ही दालच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम...

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजिव पन पसंदीद बात।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफन।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

करते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

0: परछाइयों के इस शहर में।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
5: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
6: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
5: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
6: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
5: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
6: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
5: गणपति बप्पा मोरिया।

0: ilk hey dala çıkmıyor. İlk hey Lata Mangeşkar. İlk hey Radio Mitasta. हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 3 कानूनी जागरूकता। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के प्रायोजन में तैयार किया गया है। प्रस्तुत है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 3।
1: घर में ही रहो और व्यस्त रहो, कुछ हंसने में कुछ गाने में।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 3, कानूनी जागरूकता यानी लीगल अवेयरनेस।
1: दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? अरे भाई आइए भी, हमें अपने कार्यक्रम को शुरू भी तो करना है ना।
0: अरे आ गया बेटा, आ गया, बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, तो जरा समय तो लगेगा ना।
1: लेकिन दादाजी, हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
0: अरे हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चल बेटा, मैं तो अब रेडी हो गया।
1: आइए दादाजी, हम फटाफट अपने रेडियो 90.0 एफएम के स्टूडियो चलते हैं।
2: हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान।
3: सपनों का बादल तुझे बुलाए।
2: कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है, और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान।
3: तेरा हर कदम जो खुदारी का हो।
2: जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार, और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस, और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे।
4: इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार, कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ।
2: हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में।
1: हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत ददो,
0: और ये है हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी।
1: और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं
0: आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्धजनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं।
1: ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियो पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चलाकर के सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। नंबर एक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। नंबर दो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567। नंबर तीन, वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम। नंबर चार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना। नंबर पांच, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना। नंबर छह, मोतियाबिंद ऑपरेशन। नंबर सात, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। ऐसी बहुत सारी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है।
1: दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं और ये अधिक प्रभावी तब हो जाती है जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा था।
0: ठीक कहती हो बेटा, लेकिन आजकल के कुछ लोग इन्हें बोझ समझने लग गए हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लगा है।
1: दादू, हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि वो अनमोल धरोहर है जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है और हर तरह की समस्याओं से निपटना जानते हैं।
0: वाह, क्या बात कही बेटा, शाबाश, मुझे तुझ पर नाज है। परंतु आजकल की पीढ़ी ये समझ कहां रही है और बुजुर्गों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत दुराचार को रोकने को लेकर जागरूकता और मानसिक प्रताड़ना और अन्य अपराधों से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने ददू। अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना और उसके खिलाफ आवाज उठाने को जागरूक करना है।
0: सही बात कही बेटा। अरे बेटे, तुम्हें पता है अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है।

0: बिल्कुल ठीक कहा ददू आपने। साथ ही ददू, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा।
1: वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है।
0: अरे दद्दू, अभी आगे भी तो सुनिए। अटल वयो अभ्योदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इस योजना के तहत राज्यों को इन कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त कराने के लिए प्रेरित किया जाता है।
1: अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है, मगर बेटा ये लोगों तक कैसे पहुंचता है?
0: दादाजी, इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सके। ये संगठन अटल वयो अभ्योदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
1: इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग किसी दुराचार से पीड़ित है तो वो पुलिस के साथ गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस की मदद भी ले सकता है।
0: बिल्कुल ठीक दादाजी।
1: अच्छा बेटा, ये बता, जब सरकार ये देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है, इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया क्या?
0: दुदू, हमारी सरकार हमेशा नागरिकों से दो कदम आगे की सोचती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बना दिया है।
1: अच्छा बेटा, फिर इस कानून का उद्देश्य क्या है?
0: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये अधिनियम वृद्ध लोगों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
1: सच में बेटा, क्या वृद्ध अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
0: हाँ दादू, सच कह रही हूँ मैं। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है। इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है।
1: अच्छा बेटा, अब जल्दी बता दे कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है?
0: वृद्ध अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं।
1: बेटा ये बता, भरण पोषण तो ठीक है, मगर इस अधिनियम में वृद्ध जनों को सुरक्षा कैसे दी जाती है?
0: दुदू, यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय करेगा। समझे दुदू, इतना सख्त कानून है ये।
1: अच्छा ये बता कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा?
0: दादाजी, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में ही नहीं रहना चाहते हैं या पुलिस को लगता है कि इन्हें कोई खतरा हो सकता है, तो वृद्ध आश्रम है ना?
1: वृद्धाश्रम?
0: ददू, ये एक घर जैसा है जहाँ पे उन वृद्धों को रहने, खाने और उनकी सारी सुविधाएं दी जाती है जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है।
1: समझ गया बेटा, लेकिन ये बताओ, अपने खिलाफ हो रहे हैं दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे?
0: दुदू, वो इसकी शिकायत या तो हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 पर कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में खुद जाकर या किसी अपने को बेच के भी करवा सकते हैं। साथ ही वो इसकी शिकायत सीधे न्यायालय से भी कर सकते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मेरे प्यारे दादू, इतने सारे तरीके हैं उनके पास।
1: क्या बात है बेटे।
0: दादू, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।
1: वाह बेटा, तुम तो वकील ही बन गई हो।
0: अरे दादू, तो पोती किसकी हूँ।
1: लेकिन ये तो बता, तुझे इतना सब पता कैसे चला।
0: दादू, ये तो सामान्य जानकारी है और इसे तो सभी को पता होनी ही चाहिए।
2: दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट आदित्य वर्मा है और मैं वर्ष 2009 से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ एवं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अम्बाला में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में। ऐसे व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष या बुजुर्ग माता पिता जो आर्थिक रूप से सक्षम ना है, वो अपने रखरखाव का खर्च ना उठा सकते हैं, उन्हें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने बालिक बच्चों से अपने रखरखाव खान पान का खर्च मांग सके। इसके लिए उन्हें न्यायालय में जाकर प्रार्थना पत्र देना होगा। इस कानून के अंतर्गत यदि कोई बुजुर्ग दंपति ऐसी है जिनके बच्चे ना है, वह अपने उस संबंधी से रखरखाव व खान पान का खर्च मांगने का अधिकार रखते हैं जिस संबंधी को बुजुर्ग दंपति के संपत्ति के अधिकार बुजुर्ग दंपति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होंगे। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों से खर्चे की मांग ना की जा सकती है। इसी तरह अन्य कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 144 के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों से अपने रखरखाव व खान पान की खर्च की मासिक रूप से मांग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान निशुल्क कानूनी सलाह, निशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उपलब्ध होती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
3: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं ओम बन मारी अम्बाला छावनी से वरिष्ठ जन बोल रहा हूँ। मैं बहुत से संस्थाओं से जुड़ा हूँ, वरिष्ठ जनों से विभिन्न मौकों पर मेरी उनसे बात होती है। उन बातों के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ जन के लिए पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वर्तमान सरकार उनकी परेशानियों को देखते हुए बहुत संवेदनशील है। वर्तमान सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं जिनसे वरिष्ठ जन का वास्तव में कल्याण हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वरिष्ठ जन को इन योजनाओं के बारे में जो उन्हीं के कल्याण के लिए बनाई गई हैं बहुत अधिक जानकारी नहीं है, और इस जानकारी के लिए विभिन्न माध्यमों के साथ वरिष्ठ जनों के संवाद की ज़रूरत है। वरिष्ठ जनों की सबसे पहली परेशानी है उनका अकेलापन और अकेलेपन को दूर करने के साधनों का अभाव, क्योंकि अधिकतर वरिष्ठ जन अपने परिजनों के साथ नहीं रहते हैं अथवा उनके परिजन कोई शेष रह ही नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में अपने दुख सुख को बांटने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी परेशानी है कि शरीर के निर्बल हो जाने की ऐसी अवस्था आती है जब वो स्वयं अपना इलाज करवा पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। बैंकों से अपनी धनराशि पड़े होने के बावजूद उसका निकासी करके अपने हित के लिए इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके हाथ कांपते हैं। बैंक की तरफ से उनके घरों में जा कर के उन्हें उन्हीं की राशि दिए जाने की सुविधाओं के बावजूद उसकी कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से वो वरिष्ठ जन जिन्हें मानसिक परेशानियां हैं या इस प्रकार की अन्य दिक्कतें हैं, उसके लिए भी उनके पास समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं होता है। ऐसी परेशानियों को अगर सरकार ध्यान में रख करके योजनाएं बनाती है अथवा ऐसी योजनाएं पहले से ही बनी हुई हैं, तो उन योजनाओं के बारे में वरिष्ठ जनों को, बुजुर्गों को जानकारी नहीं होती है। इन जानकारियों के अभाव में वरिष्ठ जन अपने आप को असहाय पाते हैं, अपने आप को बहुत विवश और मजबूर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो देखभाल में उनकी उपेक्षा की जाती है तो वो अपने आप में उन्हें और दीनहीन बनाती है। इस दीनहीन स्थिति से दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक किया जाना, सचेत किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सरकार कारगर कदम उठाए तो बुजुर्गों की स्थिति को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। इस बेहतरी के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ कर के एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना चाहिए और सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के इस परेशानी को कम करने का सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया।
3: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्ध जन। दोस्तों, आज वृद्ध जनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की

0: को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। सीआरए द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सुन लिया ना दादू आपने, मैंने जो अपने श्रोताओं से साझा किया था उन बातों की पुष्टि हमारे वृद्ध जनों ने अपने मुंह से कर दी।
2: सही है बेटा, तू बिल्कुल ठीक ठीक बता रही थी।
1: ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 3, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में।
2: दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को इनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है।
1: हाँ दादू, ये योजना हमें बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मददगार है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने में और उनकी सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 लगा सकते हैं।
2: तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में।
2: तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियों को फैलाते रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 3, कानूनी जागरूकता। प्रस्तुत किया किरणी दास ने लक्ष्मी के किरदार में, भारत सोपोरी दद्दू के किरदार में। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का। वॉइस बाइट्स वशिष्ठ नागरिक श्री ओम बनमाली जी और एडवोकेट आदित्य वर्मा जी की थी। उनका विशेष आभार, धन्यवाद। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित था। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: तेज की
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम। दर्द, जज्बात, मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तो गजल पेश है। दुनिया कहे बुरी है, दुनिया कहे बुरी है, ये बोतल शराब की।

0: και πότε κι αγάπη.
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का।
3: रेडियो विविधता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विविधता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।
1: वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 एफएम ते रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो, रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का।
4: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: 90.0 एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सपोरी।

नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज हमारे फौजी भाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं फौजी भाइयों आपको रेडियो विदस्ता की पूरी टीम की तरफ से और अपनी यानी आपके रेडियो सफर नरेश शर्मा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ही की बदौलत हम रातों को आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। सरहदों पर तो गोलियां चल रही हैं, कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हमारे यहां पर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन आप पूरी मुस्तैदी से हमारे लिए डटे हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। सच कहूं, आप ही हिंदुस्तान हैं और आप ही हमारी शान है। तो हम आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम थोड़ी देर के लिए आपका मनोरंजन उन गीतों से करें जो बार बार आपको आपकी पुरानी यादें याद दिलाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस विशेष कार्यक्रम से, जो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं, सलीके से भी हवाओं में खुशबू घोल देते हैं कुछ लोग, दिल की बात सिर्फ आंखों से ही बोल देते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म भरोसा का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं राजेंद्र किशन ने, संगीत तैयार किया है रवि ने, और अपने शब्दों से अपने बोलों से इसको खूबसूरती दी है लता मंगेशकर ने। पेश है आपकी पसंद का ये पहला नगमा।

शरीर कहीं होता है और दिल कहीं और होता है, और जिसकी याद में हर वक्त की दिल तड़पता रहता है ना, उसको शायद एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो नजरों में दिखाई नहीं देता ना, नजरों से दूर होता है। कहते हैं कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, क्यों तलाश रही हैं तेरी बेताब निगाहें, हमको खुद में झांक तेरी आंखों में ही दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में ही दिखाई देंगे। तो अब आपके लिए पेश है इज्जत फिल्म से ये गीत, जिसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से संवारा है, और इसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, और अपनी खूबसूरत आवाज से आपके दिल तक उतरने की कोशिश की है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने।

तो ये गीत आप सुन रहे थे ना, ये गीत था फिल्म बॉबी का, और इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से संवारा था और इसके खूबसूरत बोल आपके सामने पेश किए थे आनंद बख्शी ने। वैसे फौजी भाइयों, आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रोग्राम में जो गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं ना, ये हमारी कोशिश होती है कि ये वो गीत हों जो आपके दिल को छू जाए और आप जिनको बार बार गुनगुनाए भी। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में कुछ और सुनने की इच्छा है, निसंकोच रेडियो वितस्ता को अपना हम सफर ही समझिए और हमें हमारे दूरभाष नंबर

0501-564-1310 पर अपनी फरमाइश बताइए। हम अपने अगले एपिसोड में आपके पसंदीदा गीत जरूर सुनवाएंगे। अब हम इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं कि दिल में मतलब और जुबां से प्यार न कर, दिल में मतलब और जुबां से प्यार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर। आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आंखें से और इस गीत के संगीतकार हैं रवि। साहिर लुधियानवी के खूबसूरत शब्दों को लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज के साथ में पेश कर रहे हैं। इनके शब्द हैं, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुर्म न कर।

आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए। जिस तरह से ना आदत पड़ जाती है शरीर को खाने की, भूख की, उसी तरह से फौजी भाइयों हमारे को भी आपकी आदत पड़ गई है। हम आपके बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि फौजी भाइयों के बिना भी कोई जिंदगी हो सकती है। हम आपके एहसानमंद हैं, क्योंकि आपने जो हमारे प्रति अपना फर्ज अदा किया है और कर रहे हैं ना, ये किसी मतलब से नहीं कर रहे हैं। आपने तो अपने आप को इस देश के नाम कर दिया है। अपनी सारी खुशियां, सारी इच्छाएं आपने न्यौछावर कर दी हैं। आप वो नहीं हैं जो कहते हैं कि नाम की दोस्ती और काम की यारी दूसरों की तरह, ये आदत नहीं है हमारी। हम जानते हैं आप तो बिना किसी मतलब के सिर्फ एक ही ध्येय लेकर चल रहे हैं कि भारत हमारी माता है, हम इसकी संतान हैं, और चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि किसी की जरूरत नहीं है जो हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख ले। इसलिए हम आपके सहारे चल रहे हैं। सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये जो गीत हम आपको पेश कर रहे हैं ना, एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि है, हमारा समर्पण है। ये गीत जो हमने इस विशेष कार्यक्रम में फिल्म सफर से लिया है, इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया है और कल्याण जी, आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, कुछ मतलब से लोग हर काम हर एक्शन करते हैं। एक आप ही तो हैं जो बिना मतलब हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बस इतना सा रास्ता आप हमारे साथ में बनाए रखें, इतनी सी सिलसिला हमारा और आपका चलता रहे कि आप हमें बताते रहें और हम आपको सुनाते रहें। कहते नहीं है कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, तो आप तो अपने वतन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जितने कोई अपनी महबूबा से भी नहीं करता, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आप अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, इसी तरह के ये गीत जो आपके पसंद हैं, मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहें। बस हमें अपनी फरमाइशें बताते रहिए। जल्द ही दोबारा फिर आपके साथ में मिलूंगा। इस गाने के साथ में आपको छोड़ चलता हूं। वादा तो कीजिए अगली बार आप अपनी फरमाइश से इस प्रोग्राम को चलवाएंगे, हमें बताकर कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, और एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए इस गीत का जिसको फिल्म महबूब की मेहंदी से हमने लिया है। आनंद बख्शी के बोलों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से सजाकर लता मंगेशकर की खूबसूरत मधुर आवाज में पिरो के रखा है। जाते जाते फिर आपसे कहता जाता हूँ कि लोग मकसद से करते होंगे, हम और आप तो बिना मतलब ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर भी कहते हैं कि फिर मिलूंगा अगले प्रोग्राम के लिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपके लिए कराऊंगा आपके पसंद के कुछ गीत, कुछ नगमे, कुछ बातें, कुछ मुलाकातें, कुछ दिल की, कुछ बाहर की, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 4, प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान, सहयोग निया जैन का, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

ही अब तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं। ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: Papa made it.
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रसारण अब यहीं समाप्त हो रहा है। आशा है आपने आज हमारे सभी कार्यक्रमों को आनंद लिया होगा। आप सबके प्यार और साथ ने ही हमारे आज के दिन को यादगार बनाया। अब रात गहरी हो चली है, इसलिए आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप सबके लिए कुछ पंक्तियाँ। चांदनी रातों में ख्वाब सजाते रहिए, दिल में उम्मीदों के दिए जलाते रहिए। हर रात के बाद सुबह आती है नई, बस इसी विश्वास को दिल में बसाते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल सुबह ठीक 5:58 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए सवेरे और नए कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।